कमसा जगा मिदिया मारुदाता है कमाल तो आप तुमुनि डरो आप गुंदवार बगार अंजाव जान नालियान तो सिदान लबुआ साल कारी बुआ तुमंगात बापुपुआ तंगियन गिला चपुआ